0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई।
2: फिर
0: फुर, फुर, फुर, फुर, फुर। बताओ नी बड़ी क्या बात हुई।
3: कह दो
0: कह दो कह दो
3: कह दो

0: रघुकुल रीत चला चती चल रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचाना ना जाई
1: जाई जाई
0: बन चले।

0: ये गुड़म।
1: अरे अरे भालू आया?
2: नहीं आया।
1: तो फिर सो जाओ।
3: ताजा करें अपनी यादें लाइका गोल।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
4: Budget tight, पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
0: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, at all protected.
3: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
4: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
5: ना रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर.

0: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
1: पायलिया छनकी के ना
2: छनकी छनकी।

तम नीच हुकुम लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहो मैं कहे ना कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथिना आवे तोट, कथ कत कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाय। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच नाय।

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनिए।

सुने हाथ वैस गा नानक भक्तां सदा विगास सुने दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछ।

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साहिब नानक रहंड जाई।

ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान।

0: Virgil's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday. Ye hai Laika Gold.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: वेलकम टू द जंगल
4: फिल्म बिल्कुल फेक
3: हमारी फिल्म आर्मी वाली
5: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है
4: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो
3: और स्टार कास्ट है
4: अक्षय कुमार सुनील शेट्टी अर्शद वारसी परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास
6: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था
4: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ
7: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
8: किस लिए फिल्म में
0: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
9: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
0: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
9: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
10: जय श्री स्वामीनारायण सेव दी डेट संडे 19 जुलाई 2026 वार्षिक रथ यात्रा माटे भक्तों ने मळशे भगवान श्री जगन्नाथ जी ना रथ ने हारो अने ब्रेंट नी स्ट्रीट्स पर खेंचवानो पवित्र अवसर यात्रा नी शुरुआत थशे SKSS टेम्पल केंटन हारो थी अने समापन थशे श्री स्वामीनारायण टेम्पल स्टेनमोर पर वधु माहिती माटे बन्ने टेम्पल्स ना सोशल मीडिया अने वेबसाइट्स SKSST.org और stanmoretemple.com विजिट करो एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो जय श्री स्वामीनारायण
11: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
12: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
11: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
13: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-633 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
14: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
15: If you're ready to grow your business, at Barclays we say, let's go. From opening that second store to boosting your production, let's get growing. Whatever the goal for your business, with our £22 billion lending fund, we're ready to back UK businesses like yours. Search Barclays Business Banking. Barclays, backing your future. Subject to normal lending assessment, status and application. Terms and conditions apply.
16: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Laika Radio Network. You heard. The Laika Group, consisting of Laika Radio and Laika Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@laikamedia.co.uk.
17: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

लीजिए दो बैक टू बैक के रोमांटिक गीतों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद रेडियो लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स, जहां पर एक बार फिर से ऋतु शर्मा हाजिर है 10 से 1 आज और पूरे हफ्ते यानी कि आज से लेकर फ्राइडे तक ऋतु शर्मा आपके साथ रहेगी सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी, और उसके बाद नेक्स्ट मंडे से रवि शर्मा जी हाजिर हो जाएंगे अपनी हॉट सीट पर अपना मनोरंजन शो लेकर। लेकिन फिलहाल तो आप सभी का स्वागत है इस शो में, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, गुड मॉर्निंग, और उम्मीद है आप सब बिल्कुल हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते स्वस्थ हैप्पी हेल्दी हैं और इस मौसम का मजा ले रहे हैं जिसने एक बार फिर से करवट बदली है। इस हफ्ते मौसम अच्छा रहने वाला है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उसके बाद वाला मौसम फिर से गर्मा गर्म होने वाला है। लेकिन फिलहाल इस हफ्ते थोड़ी राहत महसूस कीजिए और इस टेम्परेचर को एंजॉय कीजिए और गीतों की फिक्र

0: UK मोबाइल ऐप, और इस मंथ के एंड से पहले पहले आप 75 पाउंड का वाउचर जीत सकते हैं एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स, ऑल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स. लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शाम को 6 बजे से ब्राजील और जापान के बीच में मैच होगा, और उसके बाद जर्मनी और पैराग्वे की टीम्स भिड़ेंगी. लेकिन याद दिला दें कि आप 15 मिनट्स की लीगल एडवाइस ले सकते हैं हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से जब आप मेंशन करते हैं लाइका.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: इस गाने को जब लता जी ने गाया था तो उनकी उम्र काफी थी, लेकिन फिर भी मिठास में कोई कमी नहीं आई है। इस गीत को सुनकर आज भी बहुत मजा आता है, और उसी तरह से माधुरी दीक्षित जैसी 90s के दौर में लगती थी, आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं। चेहरे पर स्माइल देखकर सबका दिल खुश हो जाता है। अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म हम आपके हैं कौन से लिया था मैंने ये गाना।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो भाई आप सब हमारा साथ देने के लिए जुड़ चुके हैं, आपके मैसेजेस भी मिल चुके हैं। थैंक यू राजीव पटेल जी, यस मैंने आपका मैसेज देख लिया है, थैंक यू साथ देने के लिए। शेखर आनंद जी हमारे साथ है, कहते हैं तो रोमांटिक गीतों से शुरुआत हुई है तो आज मूड रोमांटिक रहेगा। भाई बॉलीवुड के गीतों में रोमांस के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, तो मैं ना भी चाहूँ तो भी मूड रोमांटिक ही रहेगा। आप साथ दे रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। किरण हैरो से हमारा साथ दे रही हैं, वियाना में अनिल सोनी जी हैं, मृदु जी हैं, हमारे हरीश खत्री हैं, मिस्टर शेख एंड सहर, वजाहत एलेक्सा पर सुन रहे हैं एंड भारत से गिरीश जी साथ दे रहे हैं। थैंक यू हंसा वोरा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ यूं ही देते रहिए क्योंकि गीत यूं ही मैं सुनाती रहूंगी, लेकिन फिलहाल तो समय है आपको आज के ताज़ा समाचार सुनवाने का, वो भी हिंदी में।
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर भारत से। प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50th राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्हें सेशेल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने संसद को भी संबोधित किया है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी की है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के 17 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं जो होंगी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी का अलर्ट जारी किया है। केरल और उत्तर भारत के कई हिस्सों में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वो नीट पेपर लीक मामले और छात्रों की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकविद पीसी महानोबिस के योगदान को याद करते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है। कुछ खबरें विदेशों से भी सुनवा देते हैं आपको। रशिया के समाचारी संस्था नाटी के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन मुद्दे पर एंकरेज में अमेरिका के साथ हुई बातचीत में रशिया उन शर्तों को स्वीकार करता है जिसके लिए कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। पुतिन ने कहा कि एंकरेज में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन में हो रही घटनाओं को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति को मना लिया है और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह मुमकिन है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति एक मैच्योर पॉलिटिशियन है। भारत से खबर आ रही है कि भारत के असिस्टेंट कोच रायन टेन दोषहाते ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उन्हें डेब्यू से पहले उस प्रक्रिया से गुजरना होगा जिससे टीम के अन्य खिलाड़ी गुजरे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को बाहर रखना टीम में सही मैसेज नहीं है। उन्होंने टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में सूर्यवंशी को शामिल नहीं किए जाने को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। T20 वर्ल्ड चैंपियंस भारतीय टीम ये सीरीज 0-2 से हार गए हैं। उधर मीडिया रिपोर्ट्स में एक अमेरिकी अधिकारी ने हवाले से कहा है कि पिछले कुछ दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच हमलों के बाद दोनों देश तनाव कम करने और पीछे हटने पर सहमत हुए हैं। ये सहमति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास हुए कई हमलों के बाद बनी है। इन घटनाओं के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा है कि अब जहाज इस समुद्री रास्ते से स्वतंत्र रूप से आवाजाही कर सकेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से कई वार्ताएं जारी रहेंगी। फीफा वर्ल्ड कप के एक नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है और इस जीत की बदौलत कनाडा इस वर्ल्ड कप में अंतिम 16 में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि उनकी सेनाओं ने खुफिया जानकारी के आधार पर संडे और मंडे के दरमियानी रात अफगानिस्तान में सैन्य अभियान चलाए जिसमें 29 यानी कि 29 आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने डूरंड लाइन के नज़दीक सुनियोजित जमीनी अभियान चलाए। इसके बाद लाइन के नज़दीकी इलाकों में जमात उल अहरार और पाकिस्तानी तालिबान आंदोलन TTP के आतंकवादी ठिकानों और सुरक्षित कैंपों पर टारगेटेड हवाई हमले किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि खैबर पख्तूनवा के बाजौर में ज़मीनी अभियान चलाया गया जिसमें आतंकवादी कमांडर खान फ्राश यानी कि जबाल और जमात उल अहरार के 3 अन्य आतंकवादी मारे गए हैं और इसके अलावा कई अन्य घायल भी हुए हैं। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त हुए।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: रहमान।
1: शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर जुबली कुमार की फिल्म आई मिलन की बेला से लिया था ये गाना।
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
1: और लीजिए आपके मैसेजेस मिलते जा रहे हैं। दिया गुडमेस से आपका मैसेज आया है और लिख रही हैं कि मैं कुकिंग भी कर रही हूँ और साथ साथ मैं ऋतु तुम्हें भी सुन रही हूँ। तो दिया अच्छे से कुकिंग करना, टेस्टी खाना बनाना, ठीक है, अच्छे अच्छे गाने मैं सुनवा रही हूँ, थैंक यू मैसेज के लिए। और इसके अलावा रोहित हमारे साथ जुड़े हैं, चंदू शाह जी हमारे साथ हैं, ललित पटेल जी हमारे साथ हैं, कहते हैं लवली टू हियर योर वॉइस एंड टॉकिंग ऑन द शो टुडे। जी हाँ बिल्कुल, आज भी मैं यहाँ रहूंगी, आज नहीं बताया था मैंने, नेक्स्ट वीक यानी कि इस पूरे वीक मंडे टू फ्राइडे इस शो में, रवि जी के शो में मैं आपका साथ दूंगी। और फिर वीकेंड पर तो हम मिलते ही हैं एंड देन मंडे से रवि शर्मा जी आएंगे, यानी कि नेक्स्ट वाले मंडे से अभी फ्राइडे तक मैं ही रहूंगी आपके साथ। सो थैंक यू, आप सब साथ दे रहे हैं। चलिए ये भी बता दें,
2: लाइका गोल्ड हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथोल ट्रैवल।
1: तो हॉलीडे जाना है और दुबई जाने की सोच रहे हैं तो साउथोल ट्रैवल को याद कीजिए, क्योंकि इनके यहाँ बहुत अच्छी दुबई की डील्स चल रही हैं। आप उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर। इट ऑल प्रोटेक्टेड है और अब दुबई में रेस्ट्रिक्शंस भी हट चुके हैं, तो जाइए घूम कर आइए, मौसम का मजा लेकर आइए।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is Leica Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5-5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
9: जय श्री स्वामी नारायण। सेव द डेट संडे 19 जुलाई 2026 एनुअल रथ यात्रा के लिए भक्तों को मिलेगा पवित्र अवसर भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ को हैरो और ब्रेंट की स्ट्रीट्स पर खींचने का। यात्रा शुरू होगी SKSS टेंपल कैंटन हैरो से और पूर्ण होगी श्री स्वामी नारायण टेंपल स्टैनमोर पर। ज्यादा जानकारी के लिए दोनों टेंपल्स के सोशल मीडिया और वेबसाइट्स skssd.org और stanmoretemple.com विजिट करें। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो। जय श्री स्वामी नारायण।
10: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
7: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio.
0: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
12: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
13: 25? Seriously?
12: Sounds like Ojo time.
13: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
12: Sorry about the wait. How can I help?
13: You can help me celebrate. I won.
14: Feel the fun. Play Ojo.
15: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: इस फिल्म में सलमान खान से ज्यादा भाग्यश्री को पसंद किया गया था, लेकिन भाग्यश्री ने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने से ज्यादा इम्पॉर्टेंट घर बसाना समझा और उन्होंने घर बसा लिया। लेकिन आजकल काफ़ी एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर कभी रेसिपी बनाती हुई दिखती हैं, कभी योगा करती हुई नज़र आती हैं, कभी कोई फिटनेस टिप्स देती हुई नज़र आती हैं, यानी कि उन्होंने अब अपने आप को काफ़ी बिजी रखा हुआ है। रोहित, ये गाना आपको पसंद है, कहते हैं फिल्म भी बहुत अच्छी थी। यस, बहुत बड़ी हिट हुई थी, आपको अच्छा लगा गीत। थैंक यू। प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ गई हैं, थैंक यू विजय गोनोवा जी। दिलीप कुमार वैमली से जुड़े हैं, कहते हैं मैं बहुत मल्टीटास्किंग हूं और मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूं, यानी कि मैं साथ में खाना खा रहा हूं और आपको भी सुन रहा हूं। वाह वाह वाह, काश कि ये मल्टीटास्किंग सबको आ जाए, मतलब सबको आती ही है ये। वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप, मज़े के साथ खाइए और गाने तो हम आपको सुनवा ही रहे हैं। थैंक यू हंसा वोरा जी एंड नरेंद्र बागिया जी, आपने हमारे संग चार लाइनें शेयर की हैं। कहते हैं गुड मॉर्निंग ऋतु, किसी ने कहा है, क्या कहा है कि अरे आपने दो कविताएं नहीं, आज एक ही भेजी है आपने, लिखा है कि डरते हैं आग से कहीं जल ना जाए, डरते हैं ख्वाब से कहीं टूट ना जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा डरते हैं आपसे, अच्छा कहीं आप जैसे दोस्त हमें भूल ना जाए। आप ऐसे ऐसी कविताएं और ऐसे ऐसे मैसेजेस भिजवाएंगे तो आपको भला कौन भूल सकता है। थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन माई शो, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑफकोर्स मधु जी, स्वागत है आपका भी, कहती है ये गाना ऋतु मेरे नाम कर दो। लीजिए, किया हमने आपके नाम पर भी।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज जो 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 124 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 98.6 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Like a gold. Yeah, like a gold. Voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
1: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
4: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल, at all protected.
6: Search is changing.
7: Customers aren't just using Google anymore.
6: They're asking AI.
7: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
6: One business, one recommendation.
7: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
6: Will your business be the answer?
7: Or the one that got left behind?
6: The future of search has already started.
7: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
6: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe. Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
8: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
6: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
8: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
6: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
9: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
14: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
15: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
16: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
15: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
17: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocenter.org. Assuming you want to get noticed.
18: Budget tight, पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. Leica रेडियो और Leica गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@leicaradio.com.
19: Wake up to Kajalon breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Leica.

0: across Greater London. This is Leica Gold, 10:35 a.m., DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
1: The top stories this hour. Andy Burnham's preparing to set out his vision for the UK if he becomes the next Prime Minister. The Labour leadership favourite wants to create a number 10 in the north as part of wider plans to devolve powers away from Westminster. The head of the Conservatives, Kemi Badenoch, has dismissed those plans, saying they'll lead to more taxes and regulation. She says the country is now at the mercy of a lengthy leadership contest.
2: Britain is heading for a summer of chaos. We have a caretaker Prime Minister, barely in office, definitely not in power. All major policy and spending decisions have been put on hold.
1: It's thought 47,000 people are still missing following devastating earthquakes in Venezuela. More than 1,400 people are known to have died, with the hopes of finding survivors rapidly fading. An independent report found England's education system is not set up to serve white working-class children. The study says once-in-a-generation reforms are needed to tackle academic underachievement in the demographic. Resident doctors in Northern Ireland have walked out this morning in their strike over pay. Services at hospitals and GP surgeries are expected to be affected. The gates have opened ahead of the first day at Wimbledon. Brit Harriet Dart opens the action on court one against Yelena Ostapenko after Emma Raducanu withdrew last night with a stress fracture. We've heard from these people that have been camping overnight to get tickets.
3: We initially arrived at 2:40 and we had a beach tent with us that we didn't know because we hadn't opened it yet. There was over 15,000 people already camping.
4: Very excited now. We've got the court two wristband finally after however many hours it's been.
5: It's been like Mission Impossible. You know, getting your tent up, then getting your tent back down.
1: And a group of scientists are working on a way of making a healthier sausage roll. The researchers in Edinburgh say they want to cut the amount of saturated fat without ruining their flaky texture. From Sky News, I'm Kat Suave.
0: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
6: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
7: Four beers, please, garçon!
6: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
0: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
8: Good morning. आइए बात करते हैं आज के मौसम की और आज मौसम अच्छा है. बादल भी छाए रहेंगे लेकिन आज धूप भी देखने को मिलेगी और कहीं कहीं पर आज बारिश भी होने की संभावना है. लंदन में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्रीज तक रहेगा, 24 डिग्रीज तक, और मिडलैंड्स में ये 22 डिग्रीज तक जाएगा.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits.
9: Manoranjan with Ravi Sharma.
10: Leica Gold. Chintan, Chintan.
8: जी हाँ, रवि शर्मा जी के मनोरंजन शो में मैं ऋतु शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ. 11:03 हुए हैं, प्रोग्राम का सेकंड आवर है और ये समय निर्धारित है सालों से चिंतन के लिए. चिंतन यानी कि आज का विचार, और आज के विचार में एक बार फिर से एक छोटी सी कहानी जिसमें मैसेज बहुत बड़ा है. एक बार की बात है, एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा. गांव में सिर्फ एक मात्र नदी थी जो पानी का स्रोत थी, लोगों की जीवन दायिनी थी, लेकिन गर्मी के कारण वो नदी पूरी तरह से सूख चुकी थी और पानी के बिना फसलें बर्बाद हो रही थीं. लोग परेशान हो गए, चिंता में पड़ गए कि अब करें तो क्या करें. पानी तो जीवन है और पानी के बिना जीवन संभव नहीं। गांव के बुजुर्गों ने एक उपाय बताया। सबने मिलकर बैठक की पेड़ के नीचे चौपाल पर और डिसाइड हुआ कि जो नदी है उसके मुहाने पर यानी कि उसके मुंह पर मिट्टी और पत्थरों का एक छोटा सा बांध बना दिया जाए तो हो सकता है कि पहाड़ों से जो थोड़ा बहुत पानी आ रहा है वो वहां रुक जाए और शायद गांव वालों की प्यास बुझ जाए। लोगों ने कहा कि हाँ हाँ ये आइडिया अच्छा है, ऐसा ही करते हैं। और तय हुआ अगले दिन ये काम किया जाएगा। सवेरे गांव का गरीब किसान रामू वहां पहुंच गया अपनी कुदाल और टोकरी लेकर नदी पर बांध बनाने के लिए। उसने देखा कल तो सब बड़े बड़े वादे कर रहे थे लेकिन आज तो यहां पर कोई नहीं है। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, आते ही होंगे। वो अकेला ही मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदता, उसे भरता, टोकरी में डालता और जहां तय हुआ था वहां ले जाकर डाल देता। करता रहा। दोपहर हो गई, बहुत बुरी तरह वो थक भी गया और सुबह से लेकर दोपहर तक काम करते करते सिर्फ एक छोटा सा ढेर ही बना पाया। उसे देखकर गांव के कुछ लोग हंसने लगे और बोले, रामू अकेले इस पूरी नदी पर बांध कैसे बनाओगे? इस पूरी नदी को कैसे बांधोगे? तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। रामू ने मुस्कुराकर कहा कि मैं जानता हूं मैं अकेला इस काम को पूरा नहीं कर सकता हूं। कल जब मीटिंग हुई थी सरपंचों के बीच में तो सबने डिसाइड किया था कि हम इस नदी पर बांध बनाएंगे ताकि पहाड़ों से गिरने वाले पानी को रोक सकें, लेकिन कोई नहीं आया। पर मैंने सोचा क्यों ना कोशिश की जाए, छोटी छोटी कोशिशों से ही तो बड़े बड़े काम होते हैं। अगर मैं शुरुआत नहीं करूंगा तो हम सब तो प्यासे मर जाएंगे। एक एक टोकरी मिट्टी ही सही, लेकिन कुछ तो पहाड़ बनेगा, कुछ तो काम होगा, शायद मैं थोड़ा सा ही पानी रोक सकूं। बाकी के लोग जो ये मानकर बैठ गए थे कि ये संभव ही नहीं है, पहाड़ से आने वाले पानी को हम रोक ही नहीं सकते, इस सूखे को हम टाल ही नहीं सकते, रामू का जज्बा देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने कहा, नहीं, तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। पहले दो लोग रामू के साथ जुटे, उन्हें देखकर दो लोग और आ गए और देखते ही देखते पूरा गांव अपनी अपनी टोकरियां लेकर वहां पहुंच गया। पुरुष क्या, नारी क्या, बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, सभी हाथ बटाने लगे। पुरुषों ने भारी पत्थर उठाए, महिलाओं और बच्चों ने टोकरियों में मिट्टी भरी और बुजुर्गों ने सबका हौसला बढ़ाया। जो काम अकेले रामू के लिए महीनों में भी असंभव था वो पूरे गांव के हाथ बढ़ाने से मात्र दो दिनों में पूरा हो गया। और कुछ ही दिनों बाद जब पहाड़ों पर बारिश हुई तो गांव वालों का बनाया हुआ छोटा सा बांध पानी से भर गया और पूरे गांव की किस्मत बदल गई। छोटी सी कहानी है लेकिन चिंतन बहुत बड़ा है। जब हम किसी मकसद के लिए एक साथ कदम बढ़ाते हैं ना तो बंजर जमीन पर भी हरियाली लाई जा सकती है, यानी कि एकता में शक्ति है जो सूखी नदियों को जीवन दे सकती है, जो आपकी रक्षा कर सकती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, ऐसी चीज़ें हैं जहां आप अकेले पड़ जाते हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, जो चाहते हैं वो कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप एकजुट हो जाएं, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें मनवा सकते हैं, कर सकते हैं, जैसे कि गांव वालों ने वो कर दिखाया जो शायद असंभव था। और देखिए सबकी प्यास बुझाई।

0: चिंतन।
1: और यही था आज का चिंतन कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। देखिए किसी ने कितनी खूबसूरत कविता लिखी है कि अकेला राही थक जाता है, राह की धूल में खो जाता है, पर जब मिल जाते हैं कदम तो पर्वत भी झुक जाता है। एक बूंद का क्या है अस्तित्व, धूप लगते ही उड़ जाती है, पर बूंदें जब मिल जाती हैं तो सागर की लहरें बन जाती हैं। और इसी तरह एक तिनके की क्या है औकात, आंधी में उड़ जाता है, पर तिनके जब मिल जाते हैं तो भारी गजराज भी बंध जाता है। इसलिए न तू अकेला न मैं अकेला, साथ चले तो जग का मेला, कठिन डगर भी हंसकर कटेगी जब मिलकर झेलेंगे हर झमेला। क्या खूबसूरत गाना लिखा है साहिर लुधियानवी ने। ये गाना अमर है और ये गाना लोगों की रगों में जोश भरने वाला है। और इस गाने में एक मैसेज भी है और यही छोटा सा मैसेज आज चिंतन में भी था, जिसे आप सभी ने पसंद किया है। आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं। थैंक यू राजेश जी कहते हैं, बहुत सुंदर संदेश है, छोटे कदमों का एकता पर एक छोटे छोटे कदम, यानी कि एकता बड़े बदलाव लाती है, जो धीरे धीरे और संभाले हुए कर्मों के जरिए सार्थक और स्थायी सुधार प्राप्त करने पर जोर देती है। यस, अगर हम मिलकर कुछ करें तो वाकई में हम कुछ कर सकते हैं। थैंक यू आंटी जी आपके मैसेज के लिए। थैंक यू अमिता जी, अगर हम बट जाएंगे तो यस हम कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत सुंदर मैसेजेस हैं आपके आ रहे हैं। थैंक यू जैस्मीन आपके मैसेज के लिए। थैंक यू वत्सला जी। थैंक यू अर्जुन जी, भारती दीदी, शेखर आनंद, रागिनी जी, वियाना से अनिल सोनी जी, जासू जी, बुशी से जगदीश जी, हरविंदर जी, थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए। एंड साथ ही साथ ज्योत्सना वघेला, आप गीतों को पसंद कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। और ये मैसेज भेजा है किसने, नाम क्यों नहीं लिखा ये मैसेज भेजा है किरण जी आपने। सो थैंक यू, आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। तो बस यही है चिंतन, जिसके आप सब प्रशंसक हैं और ये सालों से चलता आ रहा है। और इन दिनों आजकल रवि शर्मा जी हॉलिडे मना रहे हैं, इसलिए उनकी जगह ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही है। फ्राइडे तक मैं यही रहूंगी, लेकिन फ्राइडे के बाद मंडे से रवि शर्मा जी अपनी हॉट सीट पर आ जाएंगे, लेकिन तब तक आप मेरा साथ दीजिए। चलिए बढ़ जाते हैं आगे।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: तो आज £1 के बदले में आपको मिलेंगे 124.2 भारतीय रुपए। और ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। एंड जून के खत्म होने से पहले आप जीत सकते हैं एक £75 का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000, ऑल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai.
4: Like a gold.
3: Like a gold.
4: Like a radio.
2: Football score updates. Brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
1: तो आपको बताते चलें कि आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील और जापान की टीम्स के बीच में मैच रहेगा और दूसरा मैच होगा जर्मनी और पैराग्वे के बीच में। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि आप अपनी 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से। और ये सब हो सकता है जब आप उनसे मेंशन

0: सुभान अल्लाह हसीन चेहरा ये मस्ताना अदाए खुदा महफूज रखे हर बला से हर बला से।
1: ओपी नैयर के म्यूजिक पर रफी साहब और शम्मी कपूर का कॉम्बिनेशन जब भी हुआ है कमाल ही हुआ है। और शेखर अरन जी कहते हैं कि ये गाना मेरे नाम कीजिए, बिल्कुल हमने आपके नाम पर किया शेखर जी। और दीपक जी हेचन से आपने क्या खूबसूरत मैसेज भेजा है, कहते हैं रितु व्हाट ए वंडरफुल प्रोग्राम यू प्रेजेंट विद योर डिवाइन वॉइस, क्या बात है, ये कहकर तो आपने मेरा दिन बना दिया। और आप जानना चाहते हैं कि चिंतन जिसे आपने मिस कर दिया है आप कैसे सुन सकते हैं, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज का जो चिंतन है वो भी आप फिलहाल नहीं सुन पाएंगे क्योंकि लिसन बैक पर जाने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हाँ 4-5 घंटे के बाद या नेक्स्ट डे आप ज़रूर सुन सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को। और उसके लिए आप ऐप पर जाकर या फिर आप हमारी ऑनलाइन पर भी जाकर सुन सकते हैं। और ऐप पर जब जाएंगे तो आपको राइट हैंड कॉर्नर में 3 लाइंस दिखेंगी, उन पर टच कीजिए, आपको सारा शेड्यूल दिख जाएगा, प्रेजेंटर्स कौन है, क्या प्रोग्राम्स हैं, कौन से रेडियो, और वहाँ पर एक फीचर लिसन बैक भी है। जब आप उसको टच करेंगे तो आपको पूरा कैलेंडर मंथ दिख जाएगा और उसमें आप डेट सेलेक्ट कीजिए कि आपको किस दिन का दिखना है, और बस आप जब वो डेट सेलेक्ट करेंगे तो उस दिन के प्रोग्राम्स दिख जाएंगे और उसमें आपको जो प्रोग्राम सुनना है उसको सेलेक्ट कीजिए और आप सुन सकते हैं, यानी कि 1 महीने पीछे तक के आप किसी भी प्रोग्राम को सुन सकते हैं लिसन बैक पर जाकर। तो ज़रूर कोशिश कीजिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी यंग जनरेशन या जेंजी से पूछ लीजिए क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट्स हैं इन सब कामों में, तो आई एम श्योर वो आपकी हेल्प ज़रूर कर देंगे, और अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपको ज़रूर बता देती लेकिन आप ज़रूर सुन पाएंगे। सो थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए, थैंक यू गिरीश जी, साथी हाथ बढ़ाना गीत आपको बहुत अच्छा लगा। अब्दुल गफ्फार जी नीजडन में सुन रहे हैं और कहते हैं कि ऋतु चिंतन बड़ा अच्छा लगा, और आपने लिखा है कि अच्छा मैं आपका मैसेज पढ़ती हूँ। आप कहते हैं कि जो पास्ट में रेडियो प्रेजेंटर साथी लुधियानवी होते थे वो प्रोग्राम के स्टार्ट में यही गीत लगाया करते थे और आपने आज मुझे उनकी याद दिला दी, उनकी याद ताज़ा कर दी। ओह थैंक यू अब्दुल गफ्फार जी, आपने हमारे साथ अपना मैसेज शेयर किया है, थैंक यू। ढेरों मैसेजेस हैं जिन पर जल्दी से एक नज़र डाल लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप सबको सुनवा देती हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना,
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा। This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: बड़े दिल वाला फिल्म से था ये गाना, रितेश कहते हैं गाना बहुत सुंदर है और मेरे को भी पसंद है, आपको भी पसंद है, चलिए आपके नाम पर किया है। ज्योति हमारी साथ दे रही हैं और जितने भी साथी प्रोग्राम सुन रहे हैं सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस शो में, और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद रेडियो जो है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स, और जहाँ पर ऋतु शर्मा है आपके साथ सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। गुड मॉर्निंग।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a gold.
1: Like a extra podcast update.
0: तो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है और इसका टॉपिक है ट्रेडिशंस एंड टापूज, और जिसे होस्ट किया है रेडियो वाली ने। और याद दिलाने की लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं पर भी जाकर आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
5: ये है
6: Leica Gold
7: TravelHubWorld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
8: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
9: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: Visit TravelHubWorld.com.
10: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
11: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
10: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk. Show hosted by Bina Mistry.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
12: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
11: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
12: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
11: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
12: Visit Kajal's Couture. .co.uk.
13: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
14: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
13: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
14: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.com.
13: Cashback remortgages. Your mortgage should work for you.
15: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟਪੋਟ ਕੀਤਾ।
16: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
15: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ।
16: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
17: ਗਿੱਪੀ ਗ੍ਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਟਿੰਨੋ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ
16: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
15: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ।
18: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
14: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HAMARIRAM10 for a 10% discount on all shows and tickets.
18: Exclusive radio partner, Leica Radio.
19: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
19: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
19: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
19: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02
6: 9230396357 Greens by Danube. Prime location.
19: High appreciation.
6: In Dubai.
9: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
19: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, four pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
20: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
21: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
19: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
20: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
22: Feel the fun. Play Ojo.
23: 18 plus gamble aware.
1: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan. Like a cool. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Like a Gold. Aur online suno likeagold.com pe.
24: Like a Gold. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजें थी इस गाने में, और इसमें अलका जी की आवाज काफी अलग लग रही थी क्योंकि ये उनके शुरुआती दौर का गाना था। और उसके बाद 90s में तो अलका जी ने क्या कमाल किया है, हाल फिलहाल में पद्म भूषण का अवार्ड भी जीता है। लेकिन उन पिक्चर्स में, उन वीडियोस में उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो हम यही कहेंगे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ज्योति मेहता, आपका मैसेज आया है, कहती है राकेश रोशन का गाना बड़ा ही सुंदर है और हम गाड़ी में बैठकर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो रास्ते में हो और रेडियो ऑन कर लो तो सबसे ज़्यादा मज़ा है। मुझे भी अगर मैं कहीं जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो रेडियो ही चला लेती हूँ क्योंकि वो सुनने में मज़ा आता है। सब कुछ एक साथ रहता है, फुल पैकेज होता है रेडियो में, और पता भी नहीं रहता कि नेक्स्ट गाना कौन सा आने वाला है। तो आप बिल्कुल सही कर रही हैं, हमारा साथ दे रही हैं, स्वागत है आपका इस शो में। और वीकेंड पर कहीं गई थी, वापस घर जा रही हैं, तो कहाँ गई थी, कहाँ घूमने गई थी। एनीवेज, हमारे साथ फरीदा गुलाम अली भी जुड़ चुकी हैं, कहती हैं ऋतु काफ़ी बिजी थी इसलिए अब मैसेज कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आप बस हमारा साथ दे रही हैं ना, इतना ही हमारे लिए काफी है।
1: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 124 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. Leica
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 98.6 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Leica Gold. Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods, Hayes, from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods, Hayes. Your future in the sun could start right here, 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods, Hayes.
5: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5-5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
6: वेलकम टू द जंगल।
7: फिल्म बिल्कुल फेक,
6: हमारी फिल्म आर्मी वाली
8: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
7: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
6: और स्टार कास्ट है
7: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
9: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
7: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
10: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
11: मैं किस लिए फिल्म में।
12: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
13: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
14: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
11: Mum, I'm outside.
15: Yes, literally just landed.
16: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
15: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
16: And you didn't pay those massive roaming charges?
15: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
17: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026. Watford Colosseum on Saturday, 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday, 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
18: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
19: બીએપીએસ મંદિરનો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
18: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ
19: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
18: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
19: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે. આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
18: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
19: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
20: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
21: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
22: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
21: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
22: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
21: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
22: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
23: स्प्रिंग हिट्स ऑन लाइक अ रेडियो नेटवर्क.

0: लीजिए दो बैक टू बैक रोमांटिक गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हुआ है। कभी कभी फिल्म से था ये गाना, खयाम का म्यूजिक, लता जी की शोरदा की आवाज़ें, और उससे पहले यादों की बारात जिसमें आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ें थी। और जब भी मैं यादों की बारात फिल्म के बारे में सोचती हूँ तो मुझे हमेशा या तो विजय अरोरा और जीना तमान पर पिक्चराइज ये गीत याद आता है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, या फिर जीना तमान और तारिक शाह पर चांद मेरा दिल। यू नो, धर्मेंद्र मुझे यादों की बारात में कभी भी दिमाग में नहीं आते हैं, जबकि इस फिल्म के हीरो दरअसल धर्मेंद्र ही थे। क्यों, शायद इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो इन लोगों पर पिक्चराइज गाने हैं वो ज़्यादा पॉपुलर है, और हम अक्सर फिल्म तो एक आध बार ही देखते हैं, गाने अक्सर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाने थे दोनों। आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं। गिरीश जी आनंद आज्ञा कह रहे हैं, भारत में प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू हंसा जी, आंटी जी आप हमारे साथ हैं। सत्यनारायण सैनी भारत से जुड़े हैं, उलाश टोरंटो से हैं। एंड राजीव पटेल जी, यस ऑफकोर्स आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है, थैंक यू। एंड फरीदा जी, वो जो गाना था ना, अजीब दास्ता है ये गाना आपने कहा ओल्डी गोल्डी लगाइए, आपके साथ साथ उन सभी यंगस्टर्स को डेडिकेट किया जो 65 प्लस है या फिर 70 प्लस है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं 124 रुपीस मिलेंगे 1 पाउंड के बदले में आपको 124 रुपीस 0.55 पैसे, और ये ट्रांसफ़र आपको करवाना होगा जून के ख़त्म होने से पहले पहले। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 75 पाउंड्स का वाउचर जीत सकते हैं एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स, ऑल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी, और ये सब कुछ करना होगा आपको ब्रांच में जाकर, ऑनलाइन या फिर SBI के योनो ऐप के थ्रू।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: In

0: लीजिए ओपी नैयर के म्यूजिक पर एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना आशा जी और शमशाद बेगम की आवाजों में। और आपको बता दें कि इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक शमशाद बेगम ही है और उनकी आवाज में गाया हुआ एक गाना आपको हर शो में सुनने को मिलेगा ही मिलेगा।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: सुपरहिट फिल्म, आमिर खान जूही चावला की फिल्म, अलका याग्निक की आवाज में ये गीत आपने सुना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: ये है Like a Gold 10:35 AM। तो आपको याद दिलाते चलें कि अगर आप श्री राम की कथा को देखना चाहते हैं तो भाई ये मैसेज आप ही के लिए है। लाइका रेडियो नेटवर्क जी टीवी के साथ मिलकर आपके लिए लाए हैं माइथोलॉजिकल स्टेज शो हमारे राम, और ये होने जा रहा है 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में एट लंदन एवेंटियम अपोलो, जिसमें आशुतोष राणा ने रावण का कैरेक्टर निभाया है और राहुल बुच्चर बने हैं राम। एक बहुत ही सुंदर स्टेज शो है जिसने भारत में बहुत धूम मचाई है, दुबई में बहुत धूम मचाई है। भारत में कम से कम 500 से ज़्यादा सुपरहिट शोज़ किए हैं लगभग हर शहर में, और दुबई में भी हाउसफुल शोज़ के बाद अब लंदन में आ रहा है। अगर आप राम के जीवन को देखना चाहते हैं, एक अलग अंदाज में राम के कैरेक्टर को इसमें दिखाया गया है, रावण के कैरेक्टर को देखना चाहते हैं आंखों के साथ, क्योंकि स्टेज शो देखने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो बिना किसी देरी के टिकट्स बुक कराइए, क्योंकि टिकट्स बहुत जल्दी जल्दी बिक रहे हैं और ऐसा ना हो कि आप सोचते ही रह जाएं। फौरन टिकट्स बुक कराइए और इस शो को देखकर आइए, देखने का मज़ा उठाइए।
1: ये है लाइका गोल्ड।
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: गजरा।
1: लीजिए राजेश खन्ना और मुमताज की शानदार जोड़ी पर पिक्चराइज था ये गाना फिल्म अपना देश से, जिसमें म्यूजिक था आरडी बर्मन का। और अब आपकी बात करवाते हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल प्रभाकर जी से।
2: Women's cricket updates presented by Carmel Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
1: Hello Kamal ji, bataiye aaj kya update hai hamare liye?
4: हेलो रितु जी, बस ऑल गुड थैंक यू। आप कैसे हो? ठीक हो?
1: बढ़िया, आप बताएं।
4: वेरी गुड। बस हाँ, बट यस्टरडे वी हैड एन अमेजिंग अमेजिंग डे ऑफ मेकिंग हिस्ट्री इन द T20 ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड कप। क्या हुआ? पहले तो 27,000 सपोर्टर्स वर थे, 2,000 ऑस्ट्रेलिया के थे, बाकी सारा हिसाब किताब लगा लो इंडिया के थे। तो उससे पहले बांग्लादेश की गेम थी साउथ अफ्रीका के साथ, एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम बिकॉज आउट ऑफ दैट हुएवर हैड वन देन वी वुड हैव अ चांस। वन इंडिया हैड अ चांस एंड देन बांग्लादेश वुड हैव गॉट सम गुड पॉइंट्स। तो बांग्लादेश 117 फॉर 5 इन 20 ओवर, साउथ अफ्रीका 118 फॉर 6। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू साउथ अफ्रीका एंड नाउ दे गो इनटू सेमीफाइनल। फिर हुआ बड़ा गेम और धमाल, इंडिया वन द टॉस एंड देन बैटेड 170 फॉर 4 इन 20 ओवर्स, बट दे वर वेरी स्लो। तो मुझे लगा कि 20 रन दे वर यू नो बिट शॉर्ट ऑन। फिर ऑस्ट्रेलिया, दे ऑल्दो ड्रॉप कैचेस बट दे बैटेड वेरी वेल एंड दे बैटेड मेड पार्टनरशिप्स 172 फॉर 4 इन 19 ओवर्स। सो जस्ट अबाउट जीते लास्ट ओवर में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑस्ट्रेलिया। देखो कोई जीतता है कोई हारता है, बट द क्रिकेट वॉज अ विनर यस्टरडे, सो इट वॉज फैंटेस्टिक फॉर द क्राउड, इट वॉज रियली ग्रेट। सो अभी सेमीफाइनल कल को है, पहला ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज, वेरी गुड गेम एंड इट्स गोना बी अ फुल हाउस अगेन। एंड ऑन थर्सडे वी गॉट द होम नेशन इंग्लैंड साउथ अफ्रीका टू ऑल टू प्ले फॉर दैट फाइनल स्पॉट विच इज संडे द 5th of July। तो इट्स गोना बी सम फैंटेस्टिक क्रिकेट, some records been made, some upsetting people who will be on their way out, but the cheer will be always for cricket, ladies cricket 2026.
1: Thank you Kamal ji, thank you, bye bye.
4: Thank you Riju ji, bye bye.
2: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full-week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
2: Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
1: तो आपको याद दिला दें कि अगर हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो दुबई के लिए अच्छी डील्स हैं साउथ ऑल ट्रैवल के पास। आप उन्हें फोन कीजिए 02085748410 पर, और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है।
2: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
5: Reinforcements, army definition. Extra troops or supplies deployed to strengthen an existing force. Football definition. Bringing three world-class players off the bench at 60 minutes. You're already speaking our language. You belong here. Search Army Jobs.
6: Yeah.
7: Like a gold.
8: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
9: TravelHub, best service with unbeatable price.
8: At all protected.
9: Visit TravelHub World.com.
10: Welcome to the jungle.
11: Film? बिल्कुल fake.
10: हमारे film army वाली.
0: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
6: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
7: स्टार कास्ट है
6: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
10: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
6: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
10: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
11: किस लिए फिल्म में?
12: Are we there yet?
13: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
14: Relax, I've booked the Uber already.
13: But how? My roaming isn't even working yet.
14: I switched to Simsy before we left London.
13: Simsy? Since when are you the tech expert?
14: Since I decided I want a stress-free holiday.
15: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
16: T's and C's apply.
17: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026 अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नवनाथ सेंटर हीज UB3 1AR में भजन आरती सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट srijagannath.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ।
18: लंडन गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस, परफेक्ट फॉर रिटेलर्स, ट्रेडर्स, टेकअवेज एंड केटरर्स। आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग। फॉर अटैक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिज वे, साउथ हॉल, UB24AX। वंस यू विजिट यू कम अगेन एंड अगेन।
19: Be part of a historic grand opening.
20: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
19: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River cruise and a Paris city tour.
20: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
19: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
21: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
22: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
23: 25? Seriously?
22: Sounds like Ojo time.
23: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
22: Sorry about the wait. How can I help?
23: You can help me celebrate. I won.
24: Feel the fun. Play Ojo.
25: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus gamble aware. T's and C's apply.
26: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
27: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
28: Four beers, please, garçon!
27: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
2: Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
29: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com। ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: कमाल है, ऐसा गाना सुनाता हूँ सब ड्रीम गर्ल्स के मैसेजेस आ जाते हैं, जैस्मिन, मिसेस शेख सबके।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods, बिल्कुल घर जैसा स्वाद और घर जैसी ही बात. Available at Asian stores near you.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price
3: at all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
2: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 आवर लाइन.
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं.
2: London, good news! आपका फेवरेट iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
9: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
10: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
11: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
12: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
13: 25? Seriously?
12: Sounds like Ojo time.
13: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bass Bonanza, plus instant payouts on winnings.
12: Sorry about the wait. How can I help?
13: You can help me celebrate. I won.
14: Feel the fun. Play Ojo.
15: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gambler aware. T's and C's apply.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.

0: कितना खूबसूरत गाना है, लेकिन अगला गाना जो है वो तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होगा, बिकॉज वी आर विशिंग वीडियोरामा अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, लोगों ने पता नहीं कैसी कैसी बातें उड़ाते रहते हैं, वीडियोरामा ऑन सेल, वीडियोरामा इज गोइंग टू शट डाउन, कुछ भी नहीं है। अश्विन भाई ने मेरे को खुशखबरी दी, दे हैव कंप्लीटेड 39 years एंड दे आर गेटिंग इनटू द 40th ईयर एंड लाइफ बिगिंस एट 40, डजंट इट। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर देखना बाकी है। सो अश्विन भाई, हम सब जमा होंगे वहाँ पे, and we are going to celebrate your birthday the whole week it is. So sab doston ko hum darkhast karte hain, right from east london right up to west london. Who is listening over here? Yes, kishore pandya ji sun rahe hain aur haath upar karke bol rahe hain ke zordar. Yes, he is going to be there. So khaike paan banaras wala, happy birthday to none other than Videorama.
1: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

गौहर कानपुरी, आप सुनना लिरिक्स, ट्यून से ज्यादा लिरिक्स सुनना। वी आर रिमेम्बरिंग द राइटर लिरिसिस्ट गौहर कानपुरी, जिन्होंने खूबसूरत अदा से गाने लिखे, लाइक अ गोल्ड गिव्स अ ट्रिब्यूट।

इतने खूबसूरत गाने, सबके मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि इतने प्यारे गाने, लेकिन जिस शख्स ने ये गाने लिखे उनके बारे में अगर मैं कहूँगा तो आपको थोड़ी सैड फीलिंग भी आएगी, लेकिन चलो 24 साल हो चुके हैं उनके गुजरे हुए। गौहर कानपुरी, ही वॉज बॉर्न ऑन 1st of October 1932 कानपुर में, इसलिए तो नाम है गौहर कानपुरी। 29th June 2002 में ही पास्ड अवे ड्यू टू अ किडनी इन्फेक्शन एट द एज ऑफ 69। ही डाइड 3 months बिफोर हिज 70th बर्थडे। चाइल्डहुड में कानपुर में बड़े हुए और ही वॉज फॉन्ड ऑफ राइटिंग पोएट्री जब स्कूल में थे, एंड देन बाय द टाइम ही वॉज अ टीनेजर ही मास्टर्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग। फिर तो सब लोगों ने वाह वाह करना शुरू कर दिया इनकी लिखी हुई कविताएं और गजलें सुनकर, तो इनको चस्का चढ़ गया। इन्होंने कहा अब मैं जाऊंगा बॉम्बे। जी हाँ, उस जमाने में इट वॉज बॉम्बे टू परस्यू हिज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ राइटर इन द हिंदी सिनेमा। लेकिन जाते ही इनके पसीने छूट गए। इन्होंने क्या सोचा था, खोदा पहाड़ निकला चूहा जैसी बात हो गई थी, लेकिन वो बात नहीं थी। बात ये थी कि लोग इतने बड़े बड़े सपने सजाकर आते हैं लेकिन बिना स्ट्रगल कुछ भी नहीं मिलता। जी हाँ, आप उससे बात कर रहे हो जिसने एक्सपीरियंस किया हुआ है। 10 years ऑफ स्ट्रगल, गौहर कानपुरी हैड टू स्ट्रगल फॉर 10 years। 1967 में उनको ब्रेक मिली। देखो 1957 में वो गए बॉम्बे और वहाँ 1967 में इनको फर्स्ट ब्रेक मिला प्यार की बाजी। इट वॉज सलीम प्रोडक्शंस का और एक ही गाना इन्होंने लिखा था, बड़े हसीन है सर को झुकाए बैठे हैं। गाना कुछ अच्छा चला लेकिन इतना नोटिस नहीं किया गया उनको। द कंपोजर वॉज जिमी एंड सिंगर महेंद्र कपूर एंड उषा मंगेशकर। अब उस रात के बाद 1969 की एक फिल्म थी, वहाँ पे उन्होंने गाने लिखे। एंड देन दे गॉट वन और टू सॉन्ग्स फॉर शिव भक्त बाबा बालकनाथ, 1972 की फिल्म। फिर 73 में कोरा

0: एक्शन कर रहे थे और उनकी मुलाकात गौहर कानपुरी से हुई और इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी जोड़ी बनाई, दे फॉर्म्ड अ टीम, और एक फिल्म थी जख्मी 1975 की, एंड फर्स्ट टाइम ही रोट ऑल द सॉन्ग्स, जहाँ पे एक दो गाने, दो तीन गाने मिला करते थे, लेकिन यहाँ पे पूरी फिल्म के गाने इन्होंने लिखे जख्मी के, एंड द डोर्स ऑफ सक्सेस ओपन्ड. जी हाँ, दैट वॉज अ बिग ब्रेक. आपने एक गाना तो सुना उस फिल्म का, अभी अभी थी दुश्मनी अभी दोस्ती, कितना प्यारा गाना, कैसे खूबसूरती से, कैसी खूबसूरती से लिखा. एंड देन सावन को आने दो, वो फिल्म के गाने, गानों में से इन्होंने ये गाना लिखा, सावन को आने दो, द टाइटल सॉन्ग, जसपाल सिंह एंड कल्याणी मित्रा जी ने जो गाया. फिर तो काफ़ी गाने उनको मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे, गाने लिखते गए, लेकिन वो बात नहीं बनी जो जख्मी फिल्म में बनी थी. फिर वो फिल्म का गाना उन्होंने लिखा जहाँ पे नोटिस किए गए वापस, फिल्म बाजीगर का गाना, दैट इज़ द नेक्स्ट सॉन्ग दैट इज़ कमिंग, जो विनोद राठौड़ ने गाया, अलका याग्निक और विनोद राठौड़. विनोद राठौड़ से लास्ट वीक में मेरी बात हुई, हम तैयारी कर रहे हैं उनके आने की, सुनते रहिएगा खबर. अब आगे सुनिए इनका एक गाना और उसके बाद दो ट्रिब्यूट्स और हैं. एक है सुधीर, द फेमस एक्टर, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल विलन्स, एंड द अदर वन इज ऑल्सो अ वंडरफुल लेडी, कामिनी कदम, उनके बारे में हम सुनेंगे.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 124.55 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: FIFA World Cup 2026 and the first match of round of 32, that's the knockout stage, was South Africa versus Canada, in which Canada scored 1 goal and won the match. Today at 6 p.m. it's going to be Brazil versus Japan, and 9:30 p.m. it's going to be Germany versus Paraguay. It's now the knockout stage, and don't forget, I have to tell you something special about this particular announcement that I'm making. Don't forget, you can get your 15-minute free legal advice when our sponsors Rack Law, if you mention Leica.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
4: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
5: Great news, Thadikalal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Thadikalal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Thadikalal Raiders Lane.
6: From 3rd July till 12th of July. Wow! And this is

0: संगीत है दत्ताराम का और हसरत जयपुरी की लिरिक्स, फिल्म है संतान 1959 की। वी आर डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ कामिनी कदम, who did only six or seven Hindi films, and this was one of them, Santan. Next is Talaq, her first film with Rajendra Kumar.
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu, and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: कवि प्रदीप ने लिखा, सी रामचंद्र का संगीत है।

आशा भोसले और मन्ना डे। ट्रिब्यूट टू कामिनी कदम, 26th डेथ एनिवर्सरी। हर फर्स्ट फिल्म तलाक विद राजेंद्र कुमार, 1958।

0: who people don't know much, but when they watch her movies like Hazra Ji, Hazra Ji has seen all her movies in Mauritius. And that's such a wonderful thing to know from our listeners who share with us such valuable information.
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3239, Indian rupees 125.14, Pakistani rupees 368.13, Afghan Afghanis 84.60 and Kenyan shillings 171.43.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £98.19 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Leica Gold.
1: Across London. This is Bali Brambat on Leica Gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
5: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
6: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
5: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
6: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
5: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दे डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208 574 8410 दैट्स 8574 8410 साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Kajal's Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
11: Discover Kajal's Couture Southall. The grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall. UB1 1LR.
10: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
11: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
10: Kajal's Couture, Southall, where every occasion finds its perfect style.
11: Visit kajalscouture.co.uk.
8: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
3: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
12: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ।
13: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਟਿੰਨੋ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ
14: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
12: ਦਿਸ 26 June ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ।
15: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 kW बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
17: फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
18: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
17: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
19: लॉटो फ्रॉम द नेशनल लॉटरी नाउ गिव्स यू 2 chances टू विन विद एवरी टिकट, सो इट कुड बी यू एंड इट कुड बी यू, यू एंड देन द सेम यू again, you
1: 7 stations, 1 ticket, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.

रिमेम्बरिंग सुधीर लुथरिया, भगवान दास मूलचंद लुथरिया 1944 में जन्मे हुए, उनको हम याद कर रहे हैं आज. व्हाट अ वंडरफुल एक्टर एंड विलेन. इन्होंने हकीकत में कितना अच्छा काम किया था, खोटे सिक्के, धर्मात्मा, फिर सत्ते पे सत्ता, हरे राम हरे कृष्णा, गैम्बलर, जोशीला, ये सब फिल्मों में उन्होंने काम किया था. अब हमारे रमेश सभरवाल और सरिता सभरवाल जी के मेहमान जो आए हुए हैं, उनको मैं ये गाना स्पेशली पेश करता हूँ. अभी नाम बताऊँगा कौन मेहमान है, सुनिएगा. London's biggest classics all day. This is Like a Gold.

लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट टर्न, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट अबाउट टर्न। गुस्से को छोड़

0: a song full of feelings. फिल्म एहसास 1979 की फिल्म और आज भी इतना पॉपुलर है। बप्पी लहरी का संगीत, रविंद्र पीपट की लिरिक्स, ऑफ कोर्स किशोरदा की आवाज।
1: हम बनाएंगे घर।
0: नेक्स्ट इज सैंडी शाह। And Raj Patan on Laika Radio Midlands. कल तक के लिए बाली ब्रह्मभट्ट का नमस्कार।

0: फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02208767627।
6: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Like a Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. Congestion on the M4 this evening onto the elevated section eastbound from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. A312 the Parkway all cleared up now southbound before the M4 Junction 3. A312 Church Road and Mandeville Road heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then on to Northolt Station. Still slowing on the A406 North Circular Road both ways before the Hangar Lane gyratory. Congestion on the A316 Chertsey Road westbound from Twickenham Bridge to Hospital Bridge Road roundabout. A3 West Hill eased northbound between Tibbetts Corner and Upper Richmond Road. And that's your latest traffic and travel.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
5: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course लंच सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410 दैट्स 85748410
7: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागासन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
9: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026. At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
10: Khakra Crunch Bhakri Munch. Chicky Sweet. Papad Beat. Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
11: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen Papad Pickles Chicky Pot Meals and much more.
10: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
12: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है
13: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा पता लगाने का एक ही तरीका है अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TW Pays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड विजिट twpays.com/laika या कॉल कीजिए 02031299840 TW Pays हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत
14: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 02037736333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
0: Ashwini, in for Anisa Nasir on The Evening Show on Like a Gold.
15: Hey there, main hoon Bali Brambat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baatein, raag adharit gaane on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: भाई जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। 29th ऑफ जून मोटिवेशनल मनने के लिए आप और हम आ गए हैं साथ। पूछें आप सबसे कैसे हैं आप सब। भाई टेम्परेचर जो है उन्होंने दिखा दिया कमाल। मैंने कहा था ना आप सबसे संडे तक रुको, संडे से देखो कैसा मैजिक होने वाला है। सो मैजिक शुरू हो गया एंड आई एम श्योर आप सभी बहुत बेहतर फील कर रहे होंगे। तो अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है और सारे के सारे धुरंधर जो हैं हमारे आगे फटाफट यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर में अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। आज का हमारा सवाल क्या होगा? सवाल तो ठीक ही है, लेकिन आपको बता दूं कि भाई प्लेलिस्ट इतनी अमेजिंग है ना कि वॉल्यूम अप रखना चाहते हैं ज़रूर रखिए। बैकयार्ड में, गार्डन में आके बैठे हैं, कहीं घूम रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, बिल्कुल अपनी दोस्त अश्विनी का साथ निभाते चलिए। आज का चटपटा सवाल क्या है जो हम लोग ऑलरेडी भुगत चुके हैं। डू यू फील कि तापमान जो है, जो वेदर है, उसका इफेक्ट हम सबके मूड पे होता है? डू यू थिंक कि वेदर का इफेक्ट आप सबके ऊपर हुआ है? क्योंकि मेरे ऊपर तो अच्छा खासा हुआ ही था। मैं आप सबके बारे में भी जानना चाहती हूँ, फिर मैं अपनी कहानी बताऊंगी एज यूजुअल। चलिए अब फटाफट जरा आपको बता दे SBI रेट्स और एक दो गीतों के बाद में किसी लाइफ थ्योरी पे बात करते हैं आप और हम यहीं पे, आपके और हमारे अपने द इवनिंग शो विद अश्विनी पे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.

0: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
2: FIFA World Cup में अभी ब्राजील और जापान के बीच मैच चल रहा है. 56 मिनट्स हो चुके हैं, दोनों ने एक एक गोल दागा है. जर्मनी और पैराग्वे के बीच में रात 9:30 यानी 9:30 पे गेम शुरू होगा. एंड डोंट फॉरगेट यू कैन गेट अप टू 15 मिनट्स लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
3: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
4: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
3: No fee, no gimmick.

0: जरूरत है।
1: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
2: और स्टार कास्ट है
1: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
3: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
1: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
4: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
5: किस लिए फिल्म में?
6: Great news, Thadikalal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Thadikalal Raiders Lane, 287 Raiders Lane Pinner, HA5 5EJ. Quality, value and freshness only at Thadikalal Raiders Lane.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, Atoll Protected.
3: Jai Shri Swaminarayan, Safety Date, Sunday 19 July 2026, Varshik Rath Yatra Mate. Bhaktone Marshe, Bhagwan Shri Jagannath Ji Na Rathne, Haro Ane Brentney Streets Par Khenchvano Pavitra Avsar. Yatra Ni Shuruat Thashe, SKSS Temple, Kenton Haro Thi, Ane Samapan Thashe, Shri Swaminarayan Temple, Stanmore Par. Vadhu Mahiti Mate, Banne Temples Na Social Media, Ane Websites, SKSST.org or StanmoreTemple.com Visit Karo. Exclusive Radio Partners, Like का वीडियो जय श्री स्वामीनारायण
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamare Ram.
5: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamare Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
4: Exclusive radio partner, Like Our Radio.
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5 कोर्स लंच सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
4: लाइक अ गोल लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
3: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 7:28, इट्स 7:28। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। हर रोज हम किसी न किसी लाइफ थियोरी पे बात करते हैं। आज बात करेंगे द रेड कार थियोरी। अगर आपको ये थियोरी पता है तो कंग्रेचुलेशंस, आपका रिवीजन हो रहा है, और नहीं पता है तो भी कंग्रेचुलेशंस कि कुछ नया आज आपको और पता चलने वाला है। रेड कार थियरी। तो जब भी किसी इंसान को कार लेनी होती है, वो भी रेड कलर की, तो जब वो रास्ते से जाता है, ट्रैफिक से, कहीं घूमने फिरने कहीं भी जाता है, तो अचानक उसे हर जगह रेड कार दिखने लगती है। एंड ही रियलाइजेस कि अच्छा, इतनी सारी रेड कार थी, क्योंकि अब उसे खुद को रेड कार लेनी थी, रेड कलर वाली कार लेनी थी। तो जहाँ भी जाता, कहीं पार्किंग में दिख जाती, कहीं रास्ते पे दिख रही है, उसके आसपास हर जगह उसे रेड कलर की कार दिखने लगी थी। बड़ा खुश कि चलो भाई, मुझे तो रेड कार दिखने लगी। तो अब रेड कार थियोरी का तात्पर्य क्या है, बेसिकली क्यों लोग कहते हैं रेड कार थियोरी, पता है क्या? तो रेड कार थियोरी का तात्पर्य या मतलब इतना ही है कि हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो चीज़ हमें दिखने लगती है। अगर आप अपने काम में परेशान हैं, जिस वर्क प्लेस पे आप जाते हैं, करियर में परेशान है, तो आपको 100 दुविधाएं उसमें आती रहेंगी, 100 प्रॉब्लम्स दिखेंगे। बॉस ने ये बोल दिया, मेरा कमिटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, और साथ में रिलेशनशिप्स में मेरी वाइफ ने ये नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने ये नहीं किया, मेरे बच्चों ने ये नहीं किया। तो जिस तरीके का फोकस होगा वही चीज़ें दिखेंगी। ऑन द कॉन्ट्री, इफ़ यू स्टार्ट लुकिंग एट ऑल द गुड थिंग्स विच यू हैव, नौकरी में प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल हैं, प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल है, लेकिन आज आपके पास में कम से कम नौकरी है, एवरी मंथ कुछ ना कुछ सैलरी आ रही है, बीवी ने ये कर दिया, हस्बैंड ने वैसे कर दिया, बच्चे ऐसे बात कर रहे हैं, भाई आपके पास वो रिलेशन तो है, लोगों के पास वो रिलेशन भी नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि अगर उस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है उसे लाया नहीं जाए, हाईलाइट नहीं किया जाए, बिल्कुल कीजिए, बैठिए, बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, एंड साथ में फोकस करना सीखिए ऑन ऑल द गुड थिंग्स विच यू हैव। द रेड कार थियरी दोनों तरीके से काम करती है। आप मिस्टेक्स भी ढूंढ सकते हैं और आप खुशियां भी ढूंढ सकते हैं। कैसी लगी रेड कार थियरी जरूर बताइएगा।
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी,
4: यादों की बारात।

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 48 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से फ्राइडे तक रहता है आपका और मेरा साथ। मंडे बस निकल चुका है, शाम आ गई है एंड वेदर भी अच्छा हो गया है। सो वेदर के बारे में मैंने आप सबसे सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता है वेदर का इफेक्ट हमारे मूड पे होता है। तो यस, वेदर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स ह्यूमन मूड, एनर्जी लेवल्स एंड ओवरऑल वेलबींग। तो मैं यहाँ पे शो पे आके जितनी बातें कर रही थी ना, मैं बस उतनी बातें कर रही थी, बाकी घर में मैंने मौन व्रत धारण कर रखा था। गर्मी से ना अजीब सी परेशानी मुझे होती है और मैंने कहा कि कोई तांडव ना हो इसीलिए मैं चुपचाप अपने घर में बैठती रहूँ और जब शो के टाइम पे यहाँ पे आ रही हूँ तो मैं चुपचाप अपना शो करूँ। येस्टरडे ऑनवर्ड्स मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ क्योंकि वेदर चेंज हो चुका है एंड फैंटास्टिकली आई कैन सी कि आप सर, आप बहुत सारे जो लोग हैं आप भी मेरे जैसे ही हैं। शायद हम लोग एक ही नैया में बैठे हैं कि सबने कहा कि नहीं यार मौसम मस्ताना है ना, और दिल भी दीवाना हो रखा है यहाँ पे।
1: द इवनिंग शो विद अश्विनी। Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1 you'll get 125.38 Indian rupee, 368.72 Pakistani rupee, 445.84 Sri Lankan rupee, 163.39 Bangladeshi taka, 84.83 Afghan Afghani, 171.71 Kenyan shilling, 1.32 US dollars.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. LEICA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £97.74 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: जी, मैंने अभी जो कहा कि भाई गर्मी की वजह से घर में तांडव ना हो, तो बहुत सारे लोगों को बहुत हंसी आ रही है। आप लोग मतलब सोच रहे होंगे ना कि ये यहाँ पे बैठे तो इतनी मीठी मीठी बातें करती है और ये घर पे तांडव करेगी, मतलब क्या कर सकती है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ वुमन हु सिट्स हियर ऑन दिस हॉट सीट एंड डूइंग मीठी मीठी बातें। गर्मी हमारी कुछ भी स्थिति कर सकता है। एनी वेज, सो भाई सैंडी जी और मैं, जब वो हमारे सवाल जवाब और हमारा बैंटरिंग चलता है तो मैं उनको केवल एक शब्द में जो उनको उत्तर देती हूँ, जो उनको मैं आंसर करती हूँ। सो दैट्स द फन पार्ट ऑफ अस, बिकॉज हम लोग बिहाइंड द माइक इतनी मस्ती चलती है और इतनी गपशप हमारी चलती रहती है एंड ये हमारे मस्ती का और एक तरीका है कि मैं ऐसे भी बहुत कितनी गपशप करती हूँ ये आप लोग सब अब समझ चुके हैं पिछले 2-2.5 महीने में। एंड यहाँ पे भी मेरा वैसे ही चलता है कि सैंडी जी को आके उनको परेशान करना, ऑल दिस स्टफ चलते रहता है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक मोर देन वन वर्ड। बहुत गपशप होती रहती है, ज़रूर सुनते रहिए। दिस इज लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Every morning a shopkeeper opens his doors.
6: Lights on, shutters up, staff ready.
5: But today's customers don't start on the high street.
6: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
5: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
6: They walk into your competitors.
5: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
6: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
8: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
9: Latuke halo ne nandala.
8: Watford Colosseum on Saturday, 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Meetha khara, khara. Watford Colosseum on Friday, 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
10: Yet.
11: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
10: Relax, I've booked the Uber already.
11: How? My roaming isn't even working yet.
10: I switched to Simzy before we left London.
11: Simzy? Since when are you the tech expert?
10: Since I decided I want a stress-free holiday.
12: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
10: T's and C's apply.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well-planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
14: The Evening Show with Ashwini.

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। ठंडक आ चुकी है, आप और हम हैं खुश क्योंकि गाने भी बहुत ही बेहिसाब तरीके से हमें खुशी दे रहे हैं। बहुत सारे नए नए लिसनर्स जो हैं उनके मैसेजेस भी मुझे आ रहे हैं। तो मेरे साइलेंट लिसनर्स, जी हाँ भाई साहब आप, जी हाँ बहन जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, हमें मैसेज भी कर दीजिए। इतना प्यारा हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, तो बिल्कुल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। भाई हमारे अपडेट्स आपको, जैसे मैं हर रोज़ ही कोई ना कोई क्लिप्स डालते रहती हूँ, रेडियो वाली अश्विनी दैट इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, और यही क्लिप आपको देखने मिलती है लाइका गोल्ड रेडियो का जो इंस्टाग्राम है उसकी स्टोरीज पे, साथ ही लाइका रेडियो मैनचेस्टर का जो हमारा हैंडल है उसकी स्टोरीज पे। तो बिल्कुल मज़ा मस्ती हम लोग करते रहते हैं, हमारा अपना राज होता है यहाँ पे और साथ में राज होता है हमारे इस पूरे सिस्टम का। दो बहुत ही बेहतरीन गीतों के साथ में हमने आगाज़ किया था इस आवर का राजा हिंदुस्तानी, वॉज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन वॉज आस पास इस फिल्म से। नेक्स्ट ट्रैक ओए होए, मतलब ये तो सीरियसली उफ सॉन्ग है, आप मुझे लिख के भेजो ये उफ वाला गाना होगा कि नहीं, पहले हो जाए SBI रेट्स।
1: London's biggest classics all day. Mica Gold with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 124 Indian rupees 70 paise. Send money to India via SBI YONO app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. Season C's apply. Yeah, like a

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
1: तो भाई ब्राजील और जापान के बीच में गेम कंप्लीट हो चुका है, फुल टाइम हो चुका है। ब्राजील ने दागे 2 गोल और जापान ने केवल 1। जर्मनी और पैराग्वे के बीच में रात 9:30 PM जो गेम है शुरू होने वाला है। डोंट फॉरगेट यू कैन गेट अप टू 15 मिनट्स ऑफ फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइक।
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 8:22। अभी क्यों मैं आप लोगों को बार बार टाइम याद दिला देती हूँ, शो सुनने में ना आप लोग बहुत ही मशगूल हो जाते हैं, इतना इन्वॉल्व रहते हैं शो में कि गीत एंजॉय करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये उफ वाला गीत है या नहीं, तो अरे बाप रे कितने सारे लोगों ने उफ लिख दिया, कहने लगे क्या बात है, ये तो सच में ये गाना उफ वाला गाना ही था। ब्यूटिफुल ट्रैक, आप सबको ये गीत हमने सुनाया था सिलसिला फिल्म से 1981, लता मंगेशकर एंड अमिताभ बच्चन की आवाज़ में एंड फिल्म आया गया था। आई जस्ट डोंट नो व्हाई आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस जोड़ी एंड दैट इज रेखा एंड अमिताभ बच्चन। मतलब क्यों आई एम श्योर ये क्यों आपकी तरफ से भी आता हूँ कि क्यों यार क्यों। एनीवेज चलिए भाई, सो बात करेंगे अभी ब्लू टैग के बारे में। ब्लू टैग आखिर ब्लू क्यों है, ठीक है, तो ब्लू टैग बना कैसे, किसने बनाया, क्या इसके पीछे हिस्ट्री ज्योग्राफी है, तो आपको बता दें कि ब्लू टैग एक तो बना गलती से, ठीक है, एंड इट वॉज प्योरली एक्सीडेंटल एंड इट वॉज मेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन लेस्टर इन 1969 बाई अ लेबोरेटरी रिसर्चर हु वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ मोल्डेबल सीलेंट। लेकिन ये इतना बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया कि अब क्या ही किया जाए। सो एन अननोन वर्कर एट द बॉस्टिक फैक्ट्री वॉज ट्राइंग टू इन्वेंट अ न्यू टाइप ऑफ बाथरूम सीलेंट बट इट हैड गॉन रॉन्ग बैडली। इंस्टेड हुआ ये कि ये बिग स्लाइटली स्टिकी वाइट ग्लोब लोगों को मिल गया जिसका कुछ काम होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो लोगों ने क्या किया भाई कि ये अपनी जो छोटे छोटे जो पोस्ट उन्हें स्टिक करनी होती थी नोट्स उसके लिए ये उन्होंने उठाया और ये स्टिक करना शुरू कर दिया इससे। एंड पीपल वर लाइक कि ये ग्लोब जो है ये तो काम की चीज़ है यार, ये तो हमारे यूज़ में आ रही है और इससे चीज़ें चिपक भी रही है अच्छे से। सो ब्लू टैग बना एक्सीडेंट एंड उसके बाद में अब ब्लू टैग हम ये भी जानते हैं कि वाइट टैग भी होता है, राइट, ब्लू टैग एंड वाइट टैग। तो ये एक्सीडेंटल चीज़ें जो होती ना इनकी एक अच्छी खासी लिस्ट है कि कौन सी चीज़ें और एक्सीडेंटली बनी थी, बनाने गए कुछ और, मतलब वही हो गया ना, ये तो चीज़ जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हाँ या ना बताओ मुझे।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: जी तो कुछ ऑब्जर्वेशन के बारे में कहना चाहती हूँ. सुबह मैं निकली अपनी जिम के लिए एंड अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा के एंड देन आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड टूवर्ड्स माई जिम. कभी कभी ऑब्जर्वेशन ना बहुत ज़रूरी होता है कि आसपास लोग क्या कर रहे हैं. मेरी आदत, बहुत ज़्यादा आदत है लोगों को ऑब्जर्व करने की. आई थिंक बीइंग एन एक्टर वो भी एक चीज़ अपने आप आ जाती है कि ऑब्जर्वेशंस हम लोग बहुत ज़्यादा करते रहते हैं. ऑब्वियसली हमारे एक्टिंग में भी बहुत मदद करती है. सो मैंने देखा एक महिला दातून होता है ना ब्रश, वो नीम की जो छोटी स्टिक्स होती थी जिससे दातून करते, वैसे वो दातून करते हुए जा रही हैं. ओके थोड़ा आगे मैं जा रही हूँ, बस स्टॉप था वहाँ पर एक भाई साहब, उनके हाथ में शेवर, अपनी दाढ़ी, मतलब जो भी उनका ऑब्वियसली क्लीन शेवन था, फिर भी वो और उसे क्लीन कर रहे थे. उसके आगे मैं गई तो मैंने देखा कि एक जोड़ी, एक कपल इस तरीके से मिला जैसे पता नहीं कितने जन्मों बाद वो मिले होंगे. दैट फीमेल वॉज क्राइंग, उस बंदे ने उसे बहुत प्यार से हक किया, उसके आंसू पहुँचे, दोनों ने हाथ पकड़ा. एंड मैं अपनी चाल मैंने धीरे कर ली बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी व्हाट्स हैपनिंग देयर. एंड दैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. He just wiped her tears. They hugged and they were holding hands and वो चलने लगे. And obviously तब तक मेरा जिम आ गया था. आपने ऑब्जर्व किया है आसपास ऐसी कुछ चीजें?
0: Leica Gold, Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Ashwini in for Anisa Nasir for the evening show. This is Leica Gold.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Leica Gold रेडियो, Leica रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Leica रेडियो मिडलैंड्स पर.
2: एपिसोड नंबर 22 बाहर आ चुका है भाई, बाहर आ चुका है मतलब आप लोग देख सकते हैं. ट्रेडिशंस एंड टैब्यूज, प्राइड मंथ से रिलेटेड ये टॉपिक है, होस्टेड बाय हमारी अपनी मेरी पड़ोसन, फिलहाल जो मेरी पड़ोसन है रेडियो वाली. एंड इन दिस एपिसोड वी एक्सप्लोर द रियलिटीज ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द LGBTQ कम्युनिटी इन द वर्ल्ड दैट इज स्टिल लर्निंग टू अंडरस्टैंड. बहुत सारे मुद्दों में बातें हुई हैं, जरूरी एपिसोड देखिएगा. मैंने भी अभी देखना बाकी है, आई एम गोइंग टू वॉच इट टुनाइट. लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म.
0: Leica Extra is here. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show. Leica Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
7: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओह मूवी जिन्हें सबनु हंसा-हंसा के लोटपोट कीता.
8: की कह रहे हो?
7: ओह मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता.
8: की कह रहे हो?
9: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4.
7: ड्रीम
1: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
8: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
11: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2020. At SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
12: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02208767627।
13: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
14: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica.
2: जी, Women's Cricket Updates के लिए हम चल रहे हैं सीधे हमारे अपने कमल प्रभाकर जी के पास, जो हैं हमारे क्रिकेट करेस्पॉन्डेंट. कमल जी, कैसे हैं आप?
15: गुड इवनिंग. कैसे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
2: जी बढ़िया, बस उत्सुक हैं सुनने के लिए कि क्या स्कोर है, क्या स्थिति है, कैसे चल रही है मैचेस.
15: मैं आपको बताऊं, यू आई विश यू वर देयर यस्टरडे बिकॉज दे वर रिकॉर्ड मेड इट एंड दे वर हार्ट ब्रेक्स एंड टॉप क्लास क्रिकेट प्लेयर. सो मतलब ऐसे यू नो, सो इट वाज अ ग्रेट दैट वी हैड टू डबल हेडेड मैचेस. बांग्लादेश टुक ऑन साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश डिडंट स्कोर मैनी एट ऑल एंड देन दे बोथ नीडेड द 2 points ईच. सो फिर साउथ अफ्रीका दे डिड वेरी वेल एंड गॉट द रन्स इजीली एंड दे गॉट द 2 points. सो दे and forward, congratulations to them. So they are in the semi-finals now. But uske baad jo hua na hamanga, there were 27,000 supporters in Lords yesterday, record breaking for a women's T20 game or any game for women's World Cup ka. उसके में 2000 वर ऑस्ट्रेलियन, बाकी सारे ब्लू शर्ट इंडिया के.
2: जी जी,
15: ठीक है. सो द गेम वाज सो गुड. इंडिया वन द टॉस एंड दे बैटेड फर्स्ट. दे गॉट 170 व्हिच वाजंट एज मेनी एज आई थॉट बिकॉज़ दे वर शॉर्ट ऑफ अबाउट 20 रन्स. So they did well. So you know, the captain did it from the front and batted well and got the runs. 50 मारा उसने. और फिर ऑस्ट्रेलिया की बारी आई, although वो लोग ने catches drop किए थोड़े से, and you know catches win you matches. तो ये जब इसे drop किया catches and fielding was okay, but batting. So partnership cricket में क्या होता, अगर अच्छी partnership बनाओ and that is the solid thing for the game and for them to make a platform. And that's what exactly happened. The two pair got 100 partnership and they got the runs in just on 19 overs. So just about jeet gaye Australia. Congratulations to them for being in the semi-finals. But congratulations to all the women world cricket, jidhar bhi khelte ho, respect to you, because today I'll tell you the cricket is gone to a next level. And we wish everybody so good and luck, good luck to them. सेमीफाइनल की बात करो तो टुमारो वी गॉट यू नो वी गॉट टू गेम्स टुमारो, वेल वन गेम टुमारो एंड वन ऑन थर्सडे. टुमारो वी गॉट यू नो ऑस्ट्रेलिया टेकिंग ऑन वेस्ट इंडीज एंड ऑन थर्सडे वी गॉट इंग्लैंड टेकिंग साउथ अफ्रीका. सो इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ गेम. Everything to play for. So let's see who gets into the final.
2: Thank you. Thank you, Kamal ji. We are looking forward for all the updates and we'll definitely catch up again tomorrow evening with you.
15: Thank you so much. Have a lovely evening.
2: Thank you.
16: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
14: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
16: Ashwini, brightening up your weeknights.
17: Emotion of the day. Emotion.

0: कभी तो हंसाए।
1: इमोशन ऑफ द डे,
2: इमोशन ऑफ द डे,
1: ये है
3: Like a Gold.
4: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
5: For £1, you'll get 125.38 Indian rupee, 368.75 Pakistani rupee, 445.9 Sri Lankan rupee, 163.39 Bangladeshi taka, 84.88 Afghan Afghani, 171.71 Kenyan shilling, 1.32 US dollars.
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
6: LIKA Gold.
4: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
5: Gold is currently trading at £97.49 per gram.
4: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
5: चलिए टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है, चलते हैं आखिरी गीत की तरफ। दिस इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। आप कहेंगे उफ क्या गाना था।
4: दिस इज द नंबर वन एशियन कमर्शियल ग्रुप इन लंदन कंसिस्टिंग ऑफ लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड।
7: वेलकम टू द जंगल।
8: फिल्म बिल्कुल फेक,
7: हमारी फिल्म आर्मी वाली
9: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
8: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
7: स्टार कास्ट है
8: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
10: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
8: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
11: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
12: किस लिए फिल्म में।
13: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
14: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
15: Location, location, location.
16: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
15: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
16: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
15: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
16: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
15: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
16: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
15: High appreciation.
16: In Dubai.
17: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
15: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
18: Lotke halo ne nandala.
15: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
18: Meetha khara, khara.
15: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
19: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
3: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
19: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
5: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458।
3: या लिखिए sales@leicaradio.com.
4: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: For one British pound, you can get up to 124 Indian rupees and 70 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है लाइका गोल्ड
1: मिला लेंगे घर यहाँ देखते हैं टाइम कितना हुआ है इट्स 15 मिनट्स पास्ट 9 9:15 29th ऑफ जून मंडे ओके तो जून महीना जो है बस टाटा बाय बाय बोल के निकल जाएगा हाफ ईयर ऑफ 2026 टाटा बाय बाय करके निकल गया जो टारगेट्स थे एम्स थे उस डायरेक्शन में काम चल रहा है या नहीं अभी भी शुरू किया है या नहीं भाई क्या कर रहे हैं उठिए जनाब दीदी बिल्कुल अपने टारगेट की तरफ दौड़ लगाना शुरू कीजिए छोटे से छोटी चीज़ हो बड़े से बड़ी चीज़ हो जो भी आपने लिए डिसाइड किया है उस दिशा में काम करना बहुत ज़रूरी है लाइफ देखिए इतने अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं ना कोई दिन अच्छा कोई दिन बुरा कोई दिन बहुत बुरा होता है है ना तो ग्राफ है चलता रहेगा और इस ग्राफ के साथ में आपका साथ देता है आपका अपना लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर आपकी दोस्त अश्विनी आ जाती है हर शाम 7 से 10 बजे तक आप सबका साथ देने के लिए एंड आई एम ब्लेस्ड एंड इन ग्रैटिट्यूड जिस तरीके से आप लोग सब मेरा साथ देते हैं और आप लोग मुझे एंगेज रखते हैं जब गीत चलते हैं आप लोगों के बैक टू बैक मैसेजेस चलते हैं बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना चलिए आप सबके लिए एक प्यारा सा गीत मेरी तरफ से

0: Football Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: ब्राजील और जापान के बीच गेम खत्म हो चुका है, फुल टाइम हो चुका है। ब्राजील ने मैच जीता और जर्मनी एंड पैराग्वे में अगले 10 मिनट में मैच शुरू होने वाला है। एंड डोंट फॉरगेट यू गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइक।
0: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स। कॉल 0203 345 2000 और विजिट raklaw.co.uk। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.

0: मतलब ये जब गीत आते हैं ना, ऑब्वियसली मैं ही आप लोगों के लिए चूज़ करती हूँ, प्लेलिस्ट मैं ही प्ले करती हूँ, एंड जितना आप खो जाते हो ना इन गीतों में, मैं भी उतनी खो जाती हूँ. एंड स्पेशली दिस ट्रैक स्वयंवर फिल्म से लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मुझे छू रही. मतलब रोमांटिक ट्रैक भी कितना रोमांटिक हो सकता है भाई, एंड दैट इज सो ब्यूटिफुल. आई एम जस्ट लविंग द प्लेलिस्ट टुडे. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. एंड बैक टू बैक आप लोगों की तरफ से भी इतना फीडबैक आता है हर गीत के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी पसंद कर रहे हैं ना. तो इस टाइम तक ना आधे लोग तो कल्टी मार जाते हैं, बट आई कैन सी टुडे मतलब मेजॉरिटी ऑफ आर लिसनर्स आर स्टिल ग्लूड टू द रेडियो, एंड दैट इज व्हाट इज द मैजिक ऑफ म्यूजिक. कंग्रेचुलेशंस, आप लोग इतने सुंदर कला के साथ में जुड़े हुए हैं, जो है संगीत. सुनने की भी कला होती है, सिर्फ परफॉर्मेंस ये नहीं होता कि कोई परफॉर्म कर रहा है मतलब ही परफॉर्मर है. आप अपने काम कर रहे हैं और काम करते करते आप इन गीतों को एंजॉय कर रहे हैं. जानते हैं आप खुद के साथ में कितना अच्छा काम कर रहे हैं. ये म्यूज़िक जो है आपके दिमाग को एंगेज रखता है म्यूज़िक सुनने में, एंड द रीज़न आप नेगेटिविटी की तरफ नहीं बढ़ सकते बिकॉज द रेडियो डज द ब्यूटिफुल जॉब ऑफ एंगेजिंग यू थ्रू द म्यूज़िक. एंड दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज से कि वी ऑल शुड बी इन ग्रैटिट्यूड कि ना हम लोग म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं. फैंटास्टिक ट्रैक्स. नेक्स्ट जो आप लोगों के लिए मैं पेश करने वाली हूँ, शमशाद बेगम. हमारे पूरे सप्ताह आप सुनने वाले हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक शमशाद बेगम के गीत. सो आर्टिस्ट ऑफ द वीक में मैं अगला जो गीत आप सबको सुना रही हूँ, 1951 ढोलक से शमशाद बेगम की आवाज़ में ये गीत आप सबके लिए. ऐसे ही सुनते रहिए, हमारा साथ देते रहिए. दिस इज लाइका गोल्ड रेडियो इन लंडन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. माय नेम इज अश्विनी. The show ka naam? The Evening Show with Ashwini.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: है
1: लाइका गोल्ड।
2: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
3: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on the evening show.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
11: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2020 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
12: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
13: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
14: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
12: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
13: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
15: Feel the fun. Play Ojo.
16: 18+, gamble aware.
17: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
18: For £1, you'll get 125.46 Indian rupee, 368.64 Pakistani rupee, 445.87 Sri Lankan rupee, 163.4 Bangladeshi taka, 84.81 Afghan afghani, 171.7 Kenyan shilling and 1.32 US dollars.
15: Leica Radio.
17: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
18: Gold is currently trading at £97.46 per gram.
17: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
18: Ch
0: चलिए भैया आ जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे हो जाता है एक बार टाइम चेक. इट्स नियरली 44 मिनट्स पास्ट 9 एंड गजल या कवाली मैं क्या सुनाने वाली जी हाँ, मैं सुनाने वाली हूँ गजल आप सभी को आशा भोसले की आवाज़ में उमराव जान से. एंड इस आवर का आखिरी गीत होगा अमानत फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दूर रह कर न करो बात. फैंटास्टिक ट्रैक राइट. तो हमेशा की तरह बस यही कहेंगे भाई कि गोल्ड नाइट सर्विस जो है हमारी ओवरनाइट सर्विस सुनेगा बेहतरीन गीत जो है लाइंड अप होते हैं लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2. आप सबके लिए बॉलीवुड क्लासिक्स नॉन स्टॉप बजते रहेंगे इन सारी रेडियोज पे. एंड आपका और हमारा साथ कल शाम फिर से होगा 7 बजे से लेके 10 बजे तक. सो टेरिफिक ट्यूजडे के लिए तैयार रहिएगा. आपकी दोस्त अश्विनी पहुंच जाएगी बराबर 7 बजे से आपका और हमारा साथ शुरू होगा 10 बजे तक. मेलोडीज गीतों की लड़ी रहेगी एंड लाइफ इज ब्यूटिफुल. न जाने क्यों हम लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. सो जिंदगी जीने के लिए प्यार काफी है. प्यार दो प्यार लो. नफरत एंड पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए. एंड आई फर्मली बिलीव यार प्यार करने वाले दे कैन नॉट गेट बिटर एंड अनकाइंड है ना. सो बिटरनेस ना लाए. कभी किसी से प्यार किया ना तो उसके साथ में काइंड रहे. बिल्कुल बिटरनेस ना लाए बिकॉज जिंदगी और बड़ा कड़वा सा एक टर्न ले लेती. नया डायलॉग है ना आज से नया डायलॉग बिल्कुल. कल शाम मुलाकात होगी आपकी और हमारी फिर से. ऑन दैट नोट्स आई हैव टू से लव यू ऑल. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. हीट वेव की वजह से आप लोग सब काफ़ी ड्रेन हो गए थे ना. अभी जितना ठंडा मौसम मिल रहा है एंजॉय कर लीजिए. कल शाम मिलते हैं. गुड नाइट. टेक केयर.
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
16: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
19: Star Track of the Hour sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, your flight. Aap choose karo apna style. Baki sab Star Tours experience sambhal leta hai. Visit startours.co.uk.
20: Ghazal.
21: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, at all protected.
3: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
4: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
3: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
4: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit Cashback.
3: CashbackRemortgage.co.uk. Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
5: Two businesses.
6: Same town.
5: Same service.
6: One appears on page one of Google.
5: The other doesn't.
6: Guess which one gets the customer?
5: The truth is brutal.
6: The first page of Google gets the business.
5: Everyone else gets what's left.
6: So here's the real question.
5: When your customers search for what you sell, do they find you?
6: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
5: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
8: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 0203 773 633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्र।
9: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाए।
10: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
11: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold.
12: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo. Only Leica Gold.
13: Forgotten memories refreshed. Leica Gold.

0: hit tracks non-stop throughout the night. This is Like a Goal.
1: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड।
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: 0208574 8410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 0203773633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
9: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English but louder.
10: Four beers, please, garçon!
9: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
11: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
12: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: The biggest classics throughout the night, non-stop on Gold Nights. This is Like a Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर

0: Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods, Hayes, from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods, Hayes. Your future in the sun could start right here, 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
2: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Southall Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
6: Welcome to the jungle.
7: Film? Bilkul fake.
6: Hamari film army wali.
8: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
7: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
6: और स्टार कास्ट है
7: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
9: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
7: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
10: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं.
11: मैं किस लिए फिल्म में?
12: पत्नी
7: प्रीमियर लीग शोज एट राइसलीप अल्बर्टन ईस्ट एंड साउथ लंदन लोर होम लेस्टर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
14: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
15: 25? Seriously?
14: Sounds like Ojo time.
15: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
14: Sorry about the wait. How can I help?
15: You can help me celebrate. I won.
16: Feel the fun. Play Ojo.
17: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
18: Backed for the trip? Gifts? Passport?
19: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
18: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
19: Simzy?
18: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
20: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
21: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: Gold Nights on Leica Gold.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
4: Are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
6: Relax, I've booked the Uber already.
5: How? My roaming isn't even working yet.
6: I switched to Simzy before we left London.
5: Simzy? Since when are you the tech expert?
6: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
10: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।